0: हमने अलग अलग किस्मत आजमाई का फैसला किया। मैं तो करीब जाकर गाड़ी से उतर गया, जबकि कामयामा साहब ने गाड़ी चलाते चलाते ही आतिशबाजी इंजॉय करने का फैसला किया। मुझे गाड़ी से देखने में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मैं लेना चाह रहा था।
1: अच्छा, तो बैठने की जगह मिली, आप भी पैदल चलते चलते ही इंजॉय करने लगे। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, मैं
0: जी,
1: आपको
0: जी,
1: कथा कलामी कर रही हूँ कि खूबसूरत आतिशबाजी के जो धमाके वो तो साथ साथ जारी थे, है ना? ऐसा ही होगा ना?
0: ऐसा ही, बिल्कुल।
1: अच्छा, वैसे हम भी वहीं सड़क किनारे शीट बिछाकर बैठे थे, खा पी रहे थे और हना भी देख रहे थे। आपको बैठने की जगह मिली या खड़े ही रहे?
0: नहीं, हालात इतने भी खराब नहीं थे। रश जरूर बहुत था, खास तौर पर उन जगहों पर जहां नजारा साफ था, लेकिन एक अच्छी बात ये थी पुलिस ने सड़कें आरजी तौर पर गाड़ियों के लिए बंद कर रखी थी, इसलिए सड़क पर ही बैठने की जगह बन गई थी। मैं बैठने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन दिन भर की धूप से सड़क तप रही थी। जो खानदान आए थे वो बाकायदा तैयारी करके आए थे, कोई चटाइयां लाया था, कोई फोल्डिंग कुर्सियां।
2: खदीजा साहिबा की तरह, वैसे आतिशबाजी तो एक बहाना है, असल में तो ये आउटिंग दोस्तों और खानदान वालों के साथ मिल बैठने का सुनहरी मौका था।
1: बिल्कुल। अच्छा खलील साहब, जापानी और पाकिस्तानी आतिशबाजी में सबसे बड़ा फर्क आपने क्या महसूस किया?
0: सबसे पहले तो वक्त की पाबंदी। जिस वक्त का ऐलान किया गया था एन उसी वक्त पहला गोला आसमान पर रोशन हुआ और आखिरी गोला भी ठीक मुकर्रर वक्त पर दागा गया।
2: दूसरी बात भी बताइए।
0: दूसरी बात वसीमा साहिबा, शायद 5 लाख से भी ज्यादा लोग दरिया के दोनों किनारों से ये मंजर देख रहे थे। सड़क के किनारे यूं लग रहा था जैसे पूरी फूड स्ट्रीट सज गई हो। रिवायती खानों की खुशबू फजा में फैली हुई थी, कहीं मछली पक रही थी, कहीं आइसक्रीम, कहीं बर्फ के गोले। कुछ लोग रिवायती जापानी योकाता और किमोनो में मलबूस थे। गरज बहुत गहमा गहमी थी, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था और यही चीज मुझे हैरान कर रही थी।
1: यही तो हना भी होती है, और क्या होना चाहिए था जिसे आप ढूंढ रहे थे?
0: खदीजा साहिबा, कोई कचरा ही देख लेता, कोई खाने का टुकड़ा, किसी बच्चे की गिरी हुई आइसक्रीम की छींट, कुछ तो जमीन पर नजर आना चाहिए था ना। इतना बड़ा हुजूम, लाखों लोग, इतने बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, मगर जमीन साफ की साफ। मैं ढूंढता रहा लेकिन कचरे का एक टुकड़ा भी नहीं मिला।
2: अरे वाह।
0: और एक और बात, इतने बड़े हुजूम को संभालने के लिए हमारे यहाँ तो न जाने कितने लटपरदार पुलिस वाले चाहिए। यहाँ एक आध पुलिस वाला मेगाफोन हाथ में लिए इंतहाई अदब के साथ हिदायत दे रहा था और लोग खामोशी से अमल कर रहे थे, न धक्कम पे न शोर शराबा,
2: दोनों तरफ तावन।
1: हाँ जी, और आतिशबाजी देखने का मौका भी मिला या आप यही सब देखते रहे और वक्त गुजर गया?
0: नहीं, आतिशबाजी साथ साथ इंजॉय कर रहा था, लेकिन आतिशबाजी में भी एक बड़ा फर्क है। यहाँ आतिशबाजी बाकायदा एक फ़न है, बल्कि ये फ़नकारों के दरमियान मुकाबला था। आसमान पर मुख्तलिफ शक्लों और रंगों के फ़न पारे बनाए जा रहे थे आतिशबाजी के ज़रिए। मुझे वैसे सबसे खूबसूरत सूरजमुखी के फूल का डिज़ाइन लगा।
2: अरे, अब तो आतिशबाजी ख़त्म होने वाली है, मुझे ये बताइए वापसी पे कामयामा साहब को कैसे ढूंढना, मुश्किल तो हुई होगी?
0: मैंने तो खूब मजे से आतिशबाजी देखी, लेकिन कामयामा साहब ने फोन पर बताया कि वो कुछ खास देख नहीं पाए।
2: अरे वो क्यों?
0: जबकि जहां जहां से नजारा मुमकिन था इंतजामिया ने पर्दे लगा दिए थे ताकि सड़कों पर रश ना बने, और वापसी पर उन्हें ढूंढना भी आसान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा ट्रेन में ही आफियत है। लंबी कतार में हाथ में बर्फ गोला लिए आराम आराम से चलता हुआ ट्रेन तक पहुंचा और यूं रात गए, जापान की एक और खूबसूरत याद समेटे घर वापस पहुंच गया।
1: वाह वाह, क्या दिलचस्प दास्तान है।
2: ये दास्तान थी जापान जो मैंने देखा। और सामिन, अब घड़ी की सुइयां इशारा करने लग गई हैं कि अब छोड़ें दास्तान और लें आपसे इजाजत।
0: जाने से पहले बताते चलें कि सामिन, आप हमारे होम पेज nhk.jp के जरिए हमारी खबरों प्रोग्राम सुन सकते हैं और हमें अपनी आरा भी भेज सकते हैं।
1: अच्छा, हमारा होम पेज है nhk.jp/urdu।
2: आप हमें तहरीरी पैगाम भिजवाने के साथ साथ ऑडियो या वीडियो पैगाम भी भिजवा सकते हैं। हमारे होम पेज का एड्रेस एक बार फिर सुन लीजिए, एड्रेस है nhk.jp/urdu। हम आपके ढेरों पैगाम के मुंतजिर हैं और अब NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस के मेज़बानों वसीमा आबिद, खलील शिराजी और खदीजा शाह को इजाज़त दीजिए।